0: sip on ya. Extreme energy drink.
1: 아니, 딴 가게에 매치와 아, 질까이? 그 퍼스널 넘버 블록라이 와디? 퍼스널 모바일 넘버 미 우니요 텔레콤어 바이 오피서리 아이라 블록라이 라카카이. 아니, 뱅그리? 뱅그리? 아, 저저이 탈리 랄퍼디. 썸널 퍼디나 아프이나 모바일 넘버 페디아 바디라 블록 타야 비샤 아프이나 뱅크 데비니 자나카리 핀 퍼림 데 아프이나 뱅크 카페이나 자나카리 아루이나 요리 토니 브랴 사체 탈 퍼림
2: सतर्कतना ठगी तब्दक्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैंकले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
3: बैंकी खैमुज बिले चौधरी एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आरी खई बिले तुई माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषया न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषया बैंक दे नील पर दिमो न्यो तने सतर्क तना ठजर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैं भरिलाई
1: समीचो चौदह क्या में बोधे लोटी पर दीरो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिख खाई हमरो खाई खाई बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
3: आंगी समीचो लोटी पर दियो छामता ही गुदी
1: बढ़ दी आप बढ़ दिवा लोटर खाली पर दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिल खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
3: सिद्धार्थ बैंकर क्यारे जनहितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
1: सामाजिक सञ्जाल जी छानले दाजी मरी बुझी मरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसो सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामो बिमारी छानले खना दे खुल्दिब वेबसाइट ना युआरएल चेक लना आछेवा घटना तल आफै लागि समय समय आफैना पासपोर्ट फेरदिल परिम नै तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज